0: FM. Your location for maximum music.
1: It's 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिसपन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।

0: आज सुबह किसी का व्हाट्सएप और किसी का बैंक अकाउंट हैक हो गया और कहीं एक बिजनेस साइबर अटैक का शिकार बन गया। साइबर अटैक सिर्फ सिस्टम्स को नहीं जिंदगियों को भी टारगेट करते हैं, इसीलिए इग्नाइट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम ब्रिंग्स यू द 5th डिजिटल पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन। हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स, रेड एंड ब्लू टीमिंग कॉम्पिटिशन्स। अगर आप स्टूडेंट हैं, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल या एथिकल हैकर, पाकिस्तान के अगले साइबर डिफेंडर बनिए। रजिस्टर नाउ एट cyberhackathon.pk।
1: आज सुबह गाड़ी में अपने पैसों से पेट्रोल डलवाना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
2: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शोबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।

पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एटको लेबोरेटरीज के तावन से हर जुम्मा 12:30 से 1 मालूमाती प्रोग्राम जिसमें बात होगी स्किन कंडीशन के हवाले से। पाकिस्तान के नामवर डॉक्टर्स शिरकत करेंगे, तो सुनना न भूलें सिर्फ FM 100 पाकिस्तान पर। This is your music.

0: खरीदने की?
1: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
2: दिन में अपने पैसों से किसी राह चलते की हेल्प करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड The Jazz Cash App now.
3: सिवाज स्टोन एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिरे इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुमेरात को दिन 11 से 12 बजे FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। अब आप डॉक्टर जलील को YouTube पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल और राब्ता करें 0300-555-0011 पर।
4: अभी इजी पैसा लोडिंग पैकेजेस हब से जैज V5 फैंटास्टिक पैकेज सब्सक्राइब करें और आराम से घर बैठे 1,000 रूपए का डिस्काउंट पाएं। तो देर किस बात की, क्रेजी डिस्काउंट्स अनलॉक करो विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
5: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना? अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली गैस पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज

0: location for maximum music.
1: Pakistan is building a safer, smarter digital ecosystem, and we need your talent. Step up, build a cyber-safe life, and unlock premier careers in cybersecurity at the 5th Digital Pakistan Cybersecurity Hackathon. Organized by Ignite under the Ministry of IT and Telecom, join hands-on training workshops in 16 cities and secure your future. Registrations are open now at cyberhackathon.pk.
2: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
3: सर सब नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिस्सों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 0300-0300-641 पर भेजें या सर सब पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनामात जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें। मजीद मालूमात के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीतता जा।
4: आज सुबह गाड़ी में अपने पैसों से पेट्रोल डलवाना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है, डाउनलोड द जैज़ कैश ऐप नाउ।
5: अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से यू फोन या टेलीनॉर का वीकली पावर ग्रैंड पैकेज सब्सक्राइब करें और आराम से घर बैठे 100 रुपए का डिस्काउंट पाएं। तो देर किस बात की, अमेजिंग डिस्काउंट्स अनलॉक करो विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।

0: moving.
1: There's only one station that keeps you moving all day long.
2: FM 100. 100.
3: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
4: आज सुबह गाड़ी में अपने पैसों से पेट्रोल डलवाना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज़ कैश ऐप नाउ।
5: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
6: I love it.

0: आपका डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक।
1: सुबह अपनी कमाई से अपनी बहन की स्कूल फी पे करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैस कैश ऐप नाउ।
2: सोशल मीडिया सार्फीन खसूसन नौजवान नस्ल के लिए इंटरनेट के मनफी पहलुओं की आगाही इंतहाई जरूरी है। तोहीन रसालत, इस्लाम और रियासत मुखालिफ, फौश मवाद और झूठी खबरें इंटरनेट पर डालना या शेयर करना काबिल सजा जुर्म है। लिहाजा हर किस्म के गैर कानूनी मवाद को इंटरनेट और सोशल मीडिया पर शेयर करने से गुरेज करें। ऐसे गैर कानूनी मवाद को हटाने के लिए पीटीए और ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए NCCIA से रुजू करें। ये मुफादे आमा का पैगाम अब तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
0: अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से यूफोन या टेलीनॉर का वीकली पावर ग्रैंड पैकेज सब्सक्राइब करें और आराम से घर बैठे 100 रुपए का डिस्काउंट पाएं। तो देर किस बात की, अमेजिंग डिस्काउंट्स अनलॉक करो विद इजी पैसा डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक।
3: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शोबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
4: पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एटको लेबोरेटरीज के तावन से हर जुम्मा 12:30 से 1 मालूमाती प्रोग्राम, जिसमें बात होगी स्किन कंडीशन के हवाले से। पाकिस्तान के नामवर डॉक्टर्स शिरकत करेंगे, तो सुनना ना भूलें सिर्फ FM 100 पाकिस्तान पर।

0: रोज सुबह अपने छोटे भाई को यूनिवर्सिटी के लिए पॉकेट मनी ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
1: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
2: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर, 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
3: जब तमाम बिल एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना? अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैज कैश है ना।
4: महिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबिन सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबिन जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहत

0: This program was brought to you by
1: the country's number one choice for the best music variety.
2: Best music variety.
1: FM 100. This party jams.
2: This party jams.
0: This program was brought to you by
3: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
0: And
4: Sir Subs Pakistan Challenge ki audio par apni video upload kare aur paiye jeetne ka mauka iPhone 17 Pro Max, electric bike aur shandar qeemti inamat.
0: And safre haj mein aapka khidmat guzar, jahan khwab wahan HBL. And
5: try all new Vatika shampoo, nourishes hair naturally.
6: सुबह अपनी कमाई से अपनी बहन की स्कूल फी पे करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज़ कैश ऐप नाउ.
7: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाब सिंगल रेमेडीज, मुस्तनद जर्मन महारत के साथ.

तो हम सब रवानदवा हैं। कोई मन की दुनिया में अपने आप को ढूंढ रहा है, कोई एक ट्रेन पे सफर में मुसाफिरों की तरह अपने गोल की तलाश में है, कोई बिस्तरे बंद बांधे उस खुदा की तलाश में है जो रहता है हमारे इर्द गिर्द कहीं ना कहीं, और जो हमें इंसानों के जरिए पैगाम पहुंचाता है। क्यों ना हम भी अपनी तकदीर को आजमाइश के गोल से बाहर निकाल लें और सिवाच टोन के इस प्रोग्राम के जरिए अपने मन को सुकून दे सके। ये सच्चे मोती का प्रोग्राम, सच्चा सौदा सच्चा मोती, ये प्रोग्राम वो कुदरती नवादरात का प्रोग्राम है जिसको कुदरत ने कहीं समंदर में पैदा किया, कहीं सिप्पी के मुंह में एक दाना बनाया और बारिश की बूंद से उसको पत्थर बना के इंसान के लिए जानदार पैदा कर दिया। कहीं कुदरत ने अपना कमाल दिखाते हुए पहाड़ों में गार बनाए और उनमें छुपा दिए माइंस को, और इंसान को अकल शऊर की दौलत से मालामाल करके हुनर सिखा दिया कि निकालो इन पत्थरों को और इन सच्चे मोतियों को, सच्चे पत्थरों को, असली नगीनों को निकालो, और इन असली पत्थरों को जब अपने जिस्म से मास्क करते हैं, जब अल्ट्रा वायलेट रेज जिस्म से टकराती हैं, तो इंसान यूं महसूस करता है जैसे आज सुकून मिल गया, रुके हुए तमाम काम इन्हीं असली पत्थरों से हल हो जाते हैं। बहती हुई नदियां का पानी खुद ब खुद यूं सराहत कर जाता है कि जैसे आज हमारी तकदीर खुशियां लिए हमें सुकून की तरफ लिए जा रही है। आज का प्रोग्राम सिवाच स्टोन का प्रोग्राम और आवाज की दुनिया के दोस्तों, मैं डॉक्टर जलील असलम आज आवाज बना हूं। आप सुनते हैं सिवाच स्टोन का ये प्रोग्राम, आपका मेरा साथ रहता है, और इस नंबर पे कॉल कीजिए, अपना सच्चा सौदा सच्चा मोती हासिल कीजिए और हमारे कॉलर भी बन जाइए। 0333

गरे और मां ही सही पर नहीं क्या। सिवाज स्टोन के इस प्रोग्राम में आप भी शामिल हो जाइए और अपना लकी स्टोन अभी बुक करवाइए और अपनी तकदीर को बेहतर कीजिए। सिवाज स्टोन असली सच्चे नगीनों का एक ब्रांड है, आप भी शामिल हो जाइए।

दूसरों से राब्तों के जरिए तरक्की की राहें खुलेंगी, घरेलू जिंदगी में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। सैकेटेरियस कॉस, याद रखिएगा, आपका जायचा ये बताता है कि इस साल आपकी मालियाती, आपकी माली पैसे की पोजीशन में बेहतरी आएगी और आमदन बढ़ेगी, खुद आप जिंदगी के किसी भी हाल में हो तरक्की करते चले जाएंगे और चलते चलते अपना जैमस्टोन सिबाच स्टोन का पहनते जाइएगा। कैप्रिकॉर्न स्टार जद्दी, सुन लीजिए, आप ही के स्टार में तो सूरज ग्रहण लगा है। कैप्रिकॉर्न वाले सुन लीजिए, खुशकिस्मत मुश्तरी तकरीबन सारा साल आपके बुर्ज में होगा, इसलिए जद्दी अफराद कैप्रिकॉर्न के लिए ये खुश नसीबी का साल हो सकता है। एक माली मामले में भी उसका मसला इस साल फिर उठ सकता है, लेकिन इसके नतीजे में हालात बेहतर हो सकते हैं, बड़े मोहतात से चलना होगा। एक्वेरियस, जी हाँ, और मसालत की राह हमवार हो सकती है और चलते चलते अपना लकी स्टोन सिबाच स्टोन से पहनते जाइएगा। पाइसेस हो, इस साल आप अपनी दोस्तियों और समाजी जिंदगी से अपनी ख्वाहिशात की तकमील करके अपना दामन खुशियों से भर सकते हैं। आप बड़े इंटेलिजेंट हैं पाइसेस।

0: अपने बेटे का स्टोन फिरोजा आप इसको इस्तेमाल करवाएं। अगर आप
1: आपको शिवा स्टोन के ऑफिस तक पहुंचना है और उसके लिए आपको नंबर डायल करना है, शिवा स्टोन का ऑफिस लाहौर में मौजूद है, आपको नंबर डायल करना है 0333-555-0011। अगर आप चाहते हैं मुझसे मुलाकात करना, अपनी लाइफ के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ हाथों की लकीरों पर डिस्कस करना चाहते हैं, अपने जॉडिक हॉरिस्कोप इस्तखारे पर कोई क्वेश्चन उलझन आप पास बैठ के उसका हल ढूंढना चाहते हैं, तो आपको अपॉइंटमेंट तो लेना होगी और अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको डायल करना है 0334-222-212। आप शिवाज स्टोन की फेसबुक को भी विजिट कर सकते हैं, शिवाज स्टोन SVAHJSTONE। और आप यूट्यूब पर भी मुझे देख सकते हैं और यूट्यूब के लिए आपको

इन काले रंग के कपड़े को अपने सर से मलने के बाद उसको जूतियां मार के उसको जला देना कपड़े को। आपको बुध वाले दिन सुर्ख रंग का कपड़ा जो है वो सर से मलना है, उसको जूतियां मारनी है और उसको जला देना है। ये तमाम रेमेडी है जो 120 दिन की, जो कि मैं इस मुख्तसर से टाइम में नहीं बता सकता। तो या तो आप शिवास्टोन के ऑफिस पर रब्ता कर लें, अगर आप लाहौर में हैं तो लाहौर में ऑफिस है, और अगर आप नहीं आ पाती तो आप शिवास्टोन के जो नंबर आपको बताए जा रहे हैं इन नंबरों पर रब्ता करके आप मुझसे बात कीजिएगा। मैं आपको पूरी डिटेल नोट करवा दूंगा कि आपने किस तरह से करना है।

0: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं।

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: इरशाद बारी ताला है, कहो क्या हम अल्लाह के सिवा ऐसी चीज को पुकारें जो ना हमारा भला कर सके।

0: आउट करें। फोन लॉक और बायोमेट्रिक इस्तेमाल करें। अगर फोन महफूज नहीं होगा तो व्हाट्सएप भी महफूज नहीं रहेगा। पिन, फिंगरप्रिंट या फेस लॉक जरूर फॉलो करें। याद रखें, व्हाट्सएप हैकिंग कोई तकनीकी जादू नहीं बल्कि ज्यादातर इंसानी गलती की वजह से होती है। थोड़ी सी आगाही और एहतियात से आप खुद को महफूज रख सकते हैं, अपने घर वालों को बचा सकते हैं और अपने दोस्तों को नुकसान से बचा सकते हैं।
1: ये मुफाद आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
2: लंच टाइम अपनी कलीग्स के साथ बिल स्प्लिट करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जस्ट कैश ऐप नाउ।
3: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉप सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शॉप सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
4: पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एटको लेबोरेटरीज के तावन से हर जुम्मा 12:30 से 1 मालूमाती प्रोग्राम जिसमें बात होगी स्किन कंडीशन के हवाले से। पाकिस्तान के नामवर डॉक्टर्स शिरकत करेंगे, तो सुनना न भूलें सिर्फ FM 100 पाकिस्तान पर।
5: दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय द बेस्ट ऑफ होम्योपैथी, शॉबे सिंगल रेमेडीज जर्मनी।

0: लंच टाइम अपनी कलीग्स के साथ बिल स्प्लिट करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जस्ट कैश ऐप नाउ।
1: वन स्टेशन 100 FM।
2: दिन में अपने पैसों से किसी राह चलते की हेल्प करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
3: दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय द बेस्ट ऑफ होम्योपैथी, शोबिस सिंगल रेमेडीज जर्मनी।

0: अ डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना। अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैस कैश है ना।
2: 100 FM।
3: छम छम छम किताबे लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

0: डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: दिन में अपने पैसों से किसी राह चलते की हेल्प करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
2: खालिस अज्जा, भरोसेमंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज, कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
3: दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय द बेस्ट ऑफ होम्योपैथी, श्वाबे सिंगल रेमेडीज जर्मनी।

0: डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक।
1: अपनी कमाई से अपने घर की ग्रोसरीज लेना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड जैस कैश ऐप नाउ।
2: One Station
3: 100
4: FM। लंच टाइम अपनी कॉलीग्स के साथ बिल स्प्लिट करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैस कैश ऐप नाउ।
5: दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय द बेस्ट ऑफ होम्योपैथी, शोबिस सिंगल रेमेडीज जर्मनी।

0: 100 FM.
1: छम छम छम किताबें लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

0: 100 FM.
1: चम चम चम किताब लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

0: जब 100 FM
1: छम छम छम किताबे लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

0: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
1: दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय द बेस्ट ऑफ होम्योपैथी शोबे सिंगल रेमेडीज जर्मनी।

0: 100 FM.
1: छम छम छम किताबें लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: इरशादे बारी ताला है, जो लोग काफिर हैं अपना माल खर्च करते हैं कि लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकें, सो अभी और खर्च करेंगे, मगर आखिर वो खर्च करना उनके लिए मुजिब अफसोस होगा और वो मगलूब हो जाएंगे और काफिर लोग दोजख की तरफ हांके जाएंगे। सूरह अनफाल। FM 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100.

0: आज सुबह किसी का व्हाट्सएप और किसी का बैंक अकाउंट हैक हो गया और कहीं एक बिजनेस साइबर अटैक का शिकार बन गया। साइबर अटैक सिर्फ सिस्टम्स को नहीं जिंदगियों को भी टारगेट करते हैं, इसीलिए इग्नाइट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम ब्रिंग्स यू द 5th डिजिटल पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन, हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स, रेड एंड ब्लू टीमिंग कॉम्पिटिशन्स। अगर आप स्टूडेंट हैं, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल या एथिकल हैकर, पाकिस्तान के अगले साइबर डिफेंडर बनिए। रजिस्टर नाउ एट cyberhackathon.pk।
1: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
2: 100 FM।
3: छम छम छम किताबें लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

0: secure. Join the 5th Digital Pakistan Cybersecurity Hackathon. Hands-on workshops and awareness sessions across 16 cities of Pakistan. Register now at cyberhackathon.pk.
1: An initiative of Ministry of IT and Telecom and Ignite.
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉप इज सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शॉप इज सिंगल रेमेडीज भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
5: And
6: सर सब्स पाकिस्तान चैलेंज की ऑडियो पर अपनी वीडियो अपलोड करें और पाइए जीतने का मौका आईफोन 17 प्रो मैक्स इलेक्ट्रिक बाइक और शानदार कीमती इनामात.
7: एंड सफरे हज में आपका खिदमत गुजार जहां ख्वाब वहां HBL.
8: एंड
9: ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू नरिशेस हेयर नेचुरली.
3: दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय द बेस्ट ऑफ होम्योपैथी Schwabe Single Remedies, Germany.

0: डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: सर सब नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिस्सों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 0300 0300 641 पर भेजे या सर सब पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनामात जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें। मजीद मालूमात के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीतता जा।
2: ईमेल हर अदारे के लिए एक इंतहाई अहम जराए इब्लाग है, लेकिन सिर्फ एक गलत क्लिक पूरे नेटवर्क को खतरे में डाल सकता है। साइबर मुजरिमों की जानिब से हुकूमती और निजी शोबे के मुलाजमीन को मुसलसल फिशिंग ईमेल्स भेजे जा रहे हैं। इनका क्या मकसद है? आपकी लॉगिन तफसीलात चोरी करना, सिस्टम्स को रैंसमवेयर से मुतासिर करना या गैर मजाज रसाई? महफूज रहने के लिए हमेशा ये बेहतरीन तरीके अपनाएं। हमेशा भेजने वाले की शनाख्त चेक करें, खसूसन एड्रेस। हमेशा अटैचमेंट की फाइल एक्सटेंशन चेक करें। pta.txt महफूज है, लेकिन pta.txt.exe नुकसानदेह साबित हो सकती है। अटैचमेंट खोलने से पहले जरूर स्कैन करें। ईमेल इस्तेमाल करने के बाद हमेशा लॉग आउट या साइन आउट करें। इन खतरनाक आदतों से हमेशा बचें। सरकारी ईमेल को जाती या गैर सरकारी कामों के लिए इस्तेमाल न करें। किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले असल URL जरूर चेक करें। क्लिक करने से पहले एक बार जरूर देखें। अपना ईमेल पासवर्ड किसी के साथ हरगिज शेयर न करें। पासवर्ड, OTP या हसास मालूमात ईमेल के जरिए कभी भी न भेजें। हैकर्स अक्सर फौरी कार्रवाई, धमकी, लालच या झूठे वार्निंग साइन जरूर देते हैं ताकि आप घबराकर फौरन क्लिक कर दें। अगर कोई ईमेल बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा पुरकशिश और गैर मामूली तौर पर मशकूक लगे तो एक बार जरूर रुक जाएं और इसकी तस्दीक करें। फिशिंग ईमेल से कैसे बचें? अपने आप को और अपने अदारे को महफूज रखने के लिए धमकी आमेज या जज्बाती जुबान वाली ईमेल से मोहतात रहें। नामालूम या शॉर्ट लिंक्स पर हरगिज क्लिक ना करें। भेजने वाले का मुकम्मल ईमेल एड्रेस जरूर चेक करें। अटैचमेंट से खास तौर पर मोहतात रहें, खुसूसन exe.bat.vbs.msi और दीगर एग्जीक्यूटिवल फाइल से लोगो और ग्राफिक्स आसानी से जाली बनाए जा सकते हैं। इन पर अंधा एतमाद ना करें। किसी भी मशकूक ईमेल की फौरन अपने अदारे की IT टीम को इतला करें। आपकी होशियारी ही पहली दिफाई लाइन है। होशियार रहें, महफूज रहें। ये पैगाम पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, PTA।
3: ये मुफादे आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
4: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
5: दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय द बेस्ट ऑफ होम्योपैथी, शोबे सिंगल रेमेडीज जर्मनी।
6: रात यूं दिल में तेरी भूली हुई याद आई।

0: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: 100 FM।
2: छम छम छम किताबें लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

0: डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: खालिस अज्जा, भरोसे मंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज, कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
2: दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय द बेस्ट ऑफ होम्योपैथी, श्वाबे सिंगल रेमेडीज जर्मनी।

0: cyber secure. Join the 5th Digital Pakistan Cybersecurity Hackathon. Hands-on workshops and awareness sessions across 16 cities of Pakistan. Register now at cyberhackathon.pk.
1: An initiative of Ministry of IT and Telecom and Ignite.
2: अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से यू फोन या टेलीनॉर का वीकली पावर ग्रैंड पैकेज सब्सक्राइब करें और आराम से घर बैठे 100 रुपए का डिस्काउंट पाएं। तो देर किस बात की, अमेजिंग डिस्काउंट्स अनलॉक करो विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
3: सर सब नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिस्सों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 0300-0300-641 पर भेजें या सर सब पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनामात जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें। मजीद मालूमात के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा।

0: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: 100 FM।
2: छम छम छम किताबे लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

0: It's 6:15 p.m.
1: This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
2: Abhi easy paisa loading packages hub se Jazz V5 fantastic package subscribe karein aur aaram se ghar baithe 1000 rupees ka discount paayein. To der kis baat ki? Crazy discounts unlock karo with easy paisa digital bank. Easy wala bank.
3: Late night अपने पैसों से घर पर खाना ऑर्डर करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ.
2: अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से यू फोन या टेलीनॉर का वीकली पावर ग्रैंड पैकेज सब्सक्राइब करें और आराम से घर बैठे 100 रुपए का डिस्काउंट पाएं. तो देर किस बात की? अमेजिंग डिस्काउंट्स अनलॉक करो विद इजी पैसा डिजिटल बैंक. इजी वाला बैंक.
4: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
1: दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय द बेस्ट ऑफ होम्योपैथी, श्वाबे सिंगल रेमेडीज जर्मनी.
5: अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला. मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ. यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ. तो फिर फोन हो तो 5G वाला, जैज 5G.

0: लेट नाइट अपने पैसों से घर पर खाना ऑर्डर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैस कैश ऐप नाउ।
1: 100 FM।
2: छम छम छम किताबें लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

0: FM, The Music Machine.
1: It's 7:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
2: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
3: क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल बैलेंस गैर इरादी तौर पर भी खत्म हो सकता है? ये अक्सर इस वक्त होता है जब आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है, लेकिन इंटरनेट पे एज यू गो रेट्स पर चलता रहता है, जिससे बैलेंस तेजी से कम हो सकता है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सार्फिन को आगाह किया जाता है कि ऐसे गैर जरूरी चार्जेस से मुहतात रहें। मोबाइल फोन ऑपरेटरों की जानिब से इस मसले के हल के लिए एक मुफीद और मुफ्त सर्विस मुतारिफ कराई गई है। इस सर्विस के जरिए आपका डेटा पैक खत्म होते ही इंटरनेट का इस्तेमाल खुदकार तौर पर बंद हो जाएगा, ताकि आपका कीमती बैलेंस महफूज रहे। सर्विस फाल करने के लिए दर्ज सेल कोड्स डायल करें। जैज सार्फिन के लिए *275#, जोंग सार्फिन के लिए *4004#, यूफोन सार्फिन के लिए *6611# और टेलीनोर सार्फिन के लिए *342#। अपना बैलेंस महफूज रखें और गैर जरूरी चार्जेस से बचें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम कीजिए।
4: ये मुफाद-ए-आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
5: अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से जैज V5 फैंटास्टिक पैकेज सब्सक्राइब करें और आराम से घर बैठे 1,000 रुपए का डिस्काउंट पाएं। तो देर किस बात की, क्रेजी डिस्काउंट्स अनलॉक करो विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
6: लेट नाइट अपने पैसों से घर पर खाना ऑर्डर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
5: अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से जैज V5 फैंटास्टिक पैकेज सब्सक्राइब करें और आराम से घर बैठे 1,000 रुपए का डिस्काउंट पाएं। तो देर किस बात की, क्रेजी डिस्काउंट्स अनलॉक करो विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
7: खालिस अज्जा, भरोसे मंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
1: दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय द बेस्ट ऑफ होम्योपैथी, श्वाबे सिंगल रेमेडीज जर्मनी।
8: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला। मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला, जैज 5G।

5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला, जैंस 5G।

0: Your location for maximum music.
1: It's 7:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
2: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
3: अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से जैज V5 फैंटास्टिक पैकेज सब्सक्राइब करें और आराम से घर बैठे हजार रुपए का डिस्काउंट पाएं। तो देर किस बात की, क्रेजी डिस्काउंट्स अनलॉक करो विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
4: लेट नाइट अपने पैसों से घर पर खाना ऑर्डर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
3: अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से जैज V5 फैंटास्टिक पैकेज सब्सक्राइब करें और आराम से घर बैठे हजार रुपए का डिस्काउंट पाएं। तो देर किस बात की, क्रेजी डिस्काउंट्स अनलॉक करो विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
5: वन स्टेशन 100 FM।
3: अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से यूफोन या टेलीनॉर का वीकली पावर ग्रैंड पैकेज सब्सक्राइब करें और आराम से घर बैठे 100 रुपए का डिस्काउंट पाएं। तो देर किस बात की, अमेजिंग डिस्काउंट्स अनलॉक करो विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय द बेस्ट ऑफ होम्योपैथी, शोबिस सिंगल रेमेडीज जर्मनी।

0: लेट नाइट अपने पैसों से घर पर खाना ऑर्डर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज़ कैश ऐप नाउ।
1: 100 FM।
2: छम छम छम किताबे लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

0: मैं आइटम नंबर नहीं करूंगी, जो करना है करवा दे।
1: 100.1 FM, your location for maximum music.